0: The difference is the music.
1: Swan 99.9.
2: चलो पिता जी पापा उन्हां दा साडे लई कीता होया हर कर्म बाद विच याद आउंदा। जिन्हां दे पिता अज साडे नाल नहीं हन, अज दा दिन हर किसी लई खुशी दा दिन नहीं हुंदा। कई लोग अज अपने पिता नूं फोन नहीं कर सकते, कई अपने पिता नूं मिल नहीं सकते क्योंकि वह इस दुनिया विच नहीं रहे। पर की पिता सचमुच साडे तो दूर हो जांदा? नहीं, वो अपने बच्चियां दीयां यादां विच ही जिउंदा रहिंदा है। उसकी आवाज़ विच, उसके हत्थां दी शोह विच, उसकी सिखाई हुई हर गल विच, अते उसके दित्ते संस्कारां विच, अते सब तो बाद अपने बच्चियां दे चरित्र विच। अज जिहड़े बच्चे अपने पिता नूं याद कर रहे हन, उन्हां लई इह गल, पिता शरीरक तौर ते साडे विच नहीं हन, साडे कोल नहीं हन, पर उस दीयां सिक्ख्यावां, उन्हां दा प्यार अते सारी उम्र सारे नाल रहिंदा है, रहूगा। अज उन्हां सारे पितावां नूं भी साडा नमन है जो सानूं छड के चले गए हन, उन्हां नूं याद करो, उन्हां नूं दिलों सलाम। ते कहिंदे हन कि फादर डे जिहड़ा सिर्फ फादर लई नहीं, अपने ग्रैंड फादर, कोई फादर फिगर लई भी मनाया जांदा है। फादर डे ते मौके ते असीं दादा जी ते नाना जी नूं किवें भुल सकदे हां? दादा जी दीयां कहानियां, नाना जी दीयां गल्लां, उन्हां दीयां असीसां, उन्हां दे तजर्बे, इह साडे परिवार दी दौलत हन। अज अपने पिता दे नाल अपने दादा जी नूं, नाना जी नूं, स्टेप फादर जां हर उस शख्स नूं याद करो जिन्हें तुहाडी जिंदगी विच पिता वर्गी भूमिका निभाई है। कई बार पिता सिर्फ वह नहीं हुंदा जिसने सानू जन्म दिता हुंदा, पिता वह भी हुंदा जिसने सानू संभालिया, सानू सही रास्ता दिखाया अते मुश्किल समय साडे नाल खड़ा रहा।

0: SWA 99.9.
1: The difference is the music.
2: So, बापू तेरे होने से घर में उजियारा है. So, बापू जिन्हें साढ़े वास्ते अपनी सारी जिंदगी लगाती उहदे नाल ही साड़ी जिंदगी विच रोशनी है, सहारा है. अज असी बहुत सारे पंजाब तो भी दूर बैठे हाँ, पर परिवार दियां जड़ां पंजाब दी मिट्टी नाल जुड़ियां होनियां. कई पिता इत्थे आस्ट्रेलिया विच नवें सिरे तो जिंदगी शुरू करन लगे हन. कईआं ने फैक्टरी च कम कीता, कईआं ने कंस्ट्रक्शन विच, ते कईआं ने टैक्सी चलाई. किसी ने शॉप का बिजनेस किया, किसी ने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों लई एक बेहतर भविख बनाया. कई पितावान ने अपने बच्चों नूं कहा, तुसी पढ़ो, तुसी अगे बढ़ो, मैं मेहनत करता रहांगा. उन्होंने अपने बच्चों नूं ओ मौके देण लई मेहनत भी की, शायद उन्होंने अपनी जवानी विच नहीं मिली होवे. इसलिए आस्ट्रेलिया विच रहिंदे हर पंजाबी पिता नूं अज दिलों सलाम. तुसी अपने सिर्फ अपने परिवार लई नहीं, अपनी एक पीढ़ी नूं भी नवीं धरती ते खड़ा कीता है.

अब जब जिंदगी समझ में आई है, अब जब जिम्मेदारियां आई हैं, अब जब रातों की नींद उड़ी है, अब जाकर आपकी याद आ रही है, अब समझा हूं पापा।

एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, शायद बच्चे अपने होंगे, तब समझेंगे उस दर्द को जिससे आप

0: The difference is the music.
1: Swan 99.9.
2: समा इस वेले 9 बज के स्टाइमेंट हो गए ने तो सुन रहे अपना मन पाँदा पंजाबी गीतों का प्रोग्राम। तो चलो एक कहानी सुनते हैं, बहुत बढ़िया कहानियाँ चो एक कहानी अमरता प्रीतम की लिखी हुई कहानी।
3: अमरता प्रीतम की कहानी है उदड़िया हुई कहानियाँ। मैं ते केतकी अजे एक दूजे दियां जाणू नहीं सी बनिया कि मेरी मुस्कुराहट ने उहदी मुस्कुराहट नाल दोस्ती पा ली। मेरे घर के सामने निम दे ते किकर दे रुखां च घिरिया होया एक बन है। बन दे पारले पासे तोरीए दे ते छोलीए दे खेत हन। इन्हां खेतों की खब्बी वक्खी कोल किसी सरकारी कॉलेज का एक बड़ा वड्डा बगीचा है। इस बगीचे की एक नुक्कर च केतकी की झुग्गी है। बगीचे नू सिंजण वास्ते पाणी दीआं छोटीआं छोटीआं खाला कई थाई वगदियां हन। पानी की एक खाल केतकी की झुग्गी अगों भी लंघती है। इसे खाल के कंडे बैठी हुई केतकी नू मैं रोज़ वेखती हुंदी सां। कदी वह कोई पतीला जां परात मांजदी हुंदी सी ते कदी वह सिर्फ पानी दीआं बुक्कां भर भर के चांदी दे गजरियां नाल लद्दियां हुईआं अपणियां बाहवां धो रही हुंदी सी। चांदी दे गजरियां वांग ही उहदे पिंडे उत्ते उमर ने मास दे मोटे मोटे वट पा दित्ते सां। पर वह अपने डाढ़े सौले रंग विच भी मैनू इन्नी सोहनी लगती सी कि मास के मोटे मोटे वट मैनू उहदी उम्र का शिंगार जापन लग पए सन। शायद इसलिए कि उन्हें होठां की मुस्कुराहट विच एक अजीब तरह का रज सी, एक अजीब तरह की संतुष्टता जिहड़ी अज दे जमाने च सभना दे मूहां तों गुआच गई हुई है। मैं रोज़ उन्हूं वेखदी सां ते सोचदी सां कि उन्हें पता नहीं ये रज किस तरह अपने मोटे ते काले होठां च सांभ के रख लिया सी। ते मैं उन्हूं वेखदी सां, मुस्कुरा देंदी सां, वह मैनूं वेखदी सी, मुस्कुरा देंदी सी। ते इस तरह मैनूं उहदा मूँह बगीचे दे सैकड़े फुल्लां च एक फुल वांग ही जापण लग पिया। मैनूं बहुते सारे फुल्लां दे नां नहीं आउंदे पर उहदा नाम मैनूं पता लग गया, मास दा फुल। एक बार मैं पूरे तिन्ने दिन उस बगीचे च ना जा सकी। चौथे दिन जदों गई तो उहदियां अखां मैनूं इस तरह मिलियां जिवें तिन्नां दिनां तों नहीं तिन्नां वरियां तों विछड़ियां होईयां होण। क्या हुआ बिटिया, इतने दिन नहीं आई? ठंडी बहुत थी अम्मा, बस बिस्तर में ही बैठी रही। सचमुच बहुत जाड़ा पड़ता है तुम्हारे देश में। तुम्हारा कौन सा गाँव है अम्मा? तो जहाँ झोंपड़ी डाल ली वही मेरा गाँव है। ये तो ठीक है, फिर भी अपना गाँव अपना गाँव होता है। अब तो उस धरती से नाता टूट गया बिटिया, अब तो यही कार्तिक मेरे गांव की धरती है और यही मेरे गांव का आकाश है। यही कार्तिक? कहंदिया कहंदिया उन्हें झुग्गी दे पासे वल बैठे हुए अपने मर्द वल तकिया। उम्र दे कुब नाल झुकिया होया एक आदमी जमीन उत्ते तीले ते रस्सियां बिछा के एक चटाई उणदा पिया सी। पारली गुठ च कुछ गमलियां च लगे हुए फुलां नूं पाले तो बचाउण लई शायद चटाइयां दे उल्ले हेठ रखना सी। केतकी ने बहुत छोटे जे फिकरे च बहुत वड्डी गल आख दित्ती सी। शायद बहुत वड्डियां सच्चाइयां नूं बहुत वड्डे विस्थार की लोड़ नहीं हुंदी। मैं एक अचंभे नाल उस आदमी वल वेखण लग पई जिहड़ा एक औरत लई धरती भी बन सकता है ते आसमान भी। क्या देखती हो बिटिया, ये तो मेरी बिरंग चिट्ठी है। बिरंग चिट्ठी? जब चिट्ठी पर टिक्स नहीं लगाते तो वो बिरंग हो जाती है। हाँ अम्मा, जब चिट्ठी के ऊपर टिकट नहीं होती तो वो बिरंग हो जाती है। तो फिर उस चिट्ठी को लेने वाला दुगना दाम देता है। हाँ अम्मां, उसको लेने के लिए दुगने पैसे देने पड़ते हैं। बस यही समझ लो कि इसको लेने के लिए मैंने दुगने दाम दिए हैं। एक तो तन का दाम दिया और एक मन का। मैं केतकी दे मूँह वल वेखन लग पई। केतकी का सादा ते सौला मूँह जिंदगी की किसी बड़ी वड्डी फिलासफी नाल बंगदा पिया सी। इस रिश्ते की चिट्ठी जब लिखते हैं तो गाँव के बड़े बूढ़े इसके ऊपर अपनी मोहर लगाते हैं। तो क्या अम्मा, तुम्हारी इस चिट्ठी के ऊपर गांव वालों ने अपनी मोहर नहीं लगाई थी? नहीं लगाई तो क्या हुआ, मेरी चिट्ठी थी, मैंने ले ली। ये कार्तिक की चिट्ठी तो सिर्फ केतकी के नाम लिखी है। तुम्हारा नाम केतकी है, कितना प्यारा नाम है, तुम बड़ी बहादुर औरत हो अम्मा। मैं शेरों के कबीले से हूँ। वो कौन सा कबीला है अम्मा? यही जो जंगल में शेर होते हैं वो सब हमारे भाई बंधु होते हैं। अब भी जब जंगल में कोई शेर मर जाए तो हम लोग 13 दिन उसका शोक मनाते हैं। हमारे कबीले के मर्द लोग अपना सिर मुंडवा देते हैं और मिट्टी की हंडियां फोड़कर मरने वाले के नाम पर दाल चावल बांटते हैं। सच अम्मा, मैं चकमक टोला की हूँ जिसके पैरों में कपिल धारा बहती है। ये कपिल धारा क्या है अम्मा? तुमने गंगा का नाम सुना है? गंगा नदी? गंगा बहुत पवित्र नदी है, जानती हो ना? जानती हूँ, पर कपिल धारा उससे भी पवित्र नदी है। कहते हैं कि गंगा मैया एक साल में एक बार काली गाय का रूप धारती है और कपिल धारा में स्नान करने के लिए जाती है। ये चकमक टोला किस जगह है अम्मा? करंजिया के पास। और ये करंजिया? तुमने नर्मदा का नाम सुना है? हाँ सुना है। नर्मदा नदी और सोन नदी भी नज़दीक पड़ती है, तो यह नदियाँ भी बहुत पवित्र हैं। उतनी नहीं जितनी कपिल धारा। या तो एक बार धरती की खेतियाँ सूख गई थी, लोग बेचारे उजड़ गए थे, तो उनका दुख देखकर ब्रह्मा जी रो पड़े थे। ब्रह्मा जी के आंसू धरती पर गिर पड़े। बस जहाँ उनके आंसू गिरे वहाँ ये नर्मदा और सोन नदी बहने लगी। अब इनसे खेतों को पानी मिलता है, और कपिल धारा से, इससे तो मनुष्य की आत्मा को पानी मिलता है। मैंने इसी के जल में स्नान किया था और कार्तिक को अपना पति मान लिया। अब तुम्हारी उम्र क्या होगी अम्मा? 16 बरस की होगी। पर तुम्हारे माँ बाप ने कार्तिक को तुम्हारा पति क्यों ना माना? ये बात थी कि कार्तिक की पहले एक शादी हुई थी, इसकी औरत मेरी सखी थी, बड़ी भली औरत थी। उसके घर चुंदरू मुंदरू दो बेटे हुए, दोनों बेटे एक ही दिन जन्मे थे। तो हमारे गांव का गुणिया कहने लगा कि ये औरत अच्छी नहीं है, इसने एक ही दिन अपने पति का संग भी किया था और अपने प्रेमी का भी, इसलिए एक की जगह दो बेटे जन्मे। उस बेचारी पर इतना बड़ा दोष लगा दिया। पर गुनिया की बात को कौन टालेगा? गांव का मुखिया कहने लगा कि रोमी को प्रायश्चित करना होगा। उसका नाम रोमी था। वो बेचारी रो रो कर आधी रह गई। फिर ऐसे हुआ कि रोमी का एक बेटा मर गया। गांव का गुनिया कहने लगा कि जो बेटा मर गया वो पाप का बेटा था, इसलिए मर गया। फिर रोमी ने एक दिन दूसरे बेटे को पालने में डाल दिया और थोड़ी दूर जाकर महुए के फूल चुनने लगी। पास की झाड़ी से एक भागता हुआ हिरन आया। हिरन के पीछे शिकारी कुत्ता लगा हुआ था। शिकारी कुत्ता जब पलने के पास आया तो उसने हिरन को पीछा छोड़ दिया और पालने में पड़े हुए बच्चे को खा लिया, बेचारी रोमी। अब गांव का गुनिया कहने लगा कि जो पाप का बेटा था उसकी आत्मा हिरन की जून में चली गई, तभी तो हिरन भागता हुआ आया और दूसरे बेटे के खाने के लिए पलने के पास आ गया। पर बच्चे को हिरन ने तो कुछ नहीं कहा था, उसको तो शिकारी कुत्ते ने मार दिया था। गुनिया की बात को कोई नहीं समझ सकता बिटिया। वो कहने लगा कि पहले तो पाप की आत्मा हिरन में थी, फिर जल्दी से उस कुत्ते में चली गई। ये गुनिया लोग तो बात ही बात में किसी को मरवा डालते हैं। बसाई का नंदा जब शिकार करने गया था तो उसका तीर किसी हिरन को नहीं लगा था। गुनिया ने कह दिया कि जरूर उसके पीछे उसकी औरत किसी गैर मर्द के साथ सोई होगी, तभी तो उसका तीर निशाने पर नहीं लगा। तो नंदा ने घर आकर अपनी औरत को तीर से मार दिया। अरे, गुनिया ने कार्तिक से कहा कि वो अपनी औरत को जान से मार डाले। नहीं मारेगा तो पाप की आत्मा उसके पेट से फिर जन्म लेगी और उसका मुख देखकर गांव की खेतियां सूख जाएंगी। फिर कार्तिक अपनी औरत को मारने के लिए राजी नहीं हुआ। इससे गुनिया भी नाराज हो गया और गांव के लोग भी। गांव के लोग जब नाराज हो जाते हैं तो क्या करते हैं? लोग गुनिया से बहुत डरते हैं, सोचते हैं अगर गुनिया जादू कर देगा तो सारे गाँव के पशु मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने कार्तिक का हुक्का पानी बंद कर दिया। पर वो ये नहीं सोचते थे कि अगर कोई इस तरह अपनी औरत को मार देगा तो फिर वो खुद भी जिंदा कैसे बचेगा? क्यों, उसको क्या होगा? उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी? पुलिस नहीं पकड़ सकती। पुलिस तो तब पकड़ती है जब गांव वाले गवाही देते हैं, पर जब गांव वाले किसी को मारना ठीक समझते हैं तो पुलिस को पता ही नहीं लगने देते। फिर क्या हुआ? बेचारी रोपी ने तंग आकर महुए के पेड़ से रस्सी बांध ली और अपने गले में डालकर मर गई, बेचारी बेगुनाह रोपी। गांव वाले ने तो समझा कि बात खत्म हो गई, पर मुझे मालूम था कि बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि कार्तिक ने अपने मन में ठान लिया था कि वो गुनिया को जान से मार डालेगा। ये तो मुझे मालूम था कि गुनिया जब मर जाएगा, मरकर राक्षस बनेगा। वो तो जीते जी भी राक्षस था। जानते हो राक्षस क्या होता है? क्या होता है? जो आदमी दुनिया में किसी को प्रेम नहीं करता वो मर कर अपने गांव के दरख्तों पर रहता है। उसके रूह काली हो जाती है और रात को उसी की छाती से आग निकलती है। वो रात को गांव के जवान लड़कियों को डराता है। फिर मुझे उसके मरने का तो गम नहीं था, पर मैं जानती थी कार्तिक ने अगर उसको मार दिया तो गांव वाले कार्तिक को उसी दिन तीरों से मार देंगे। फिर मैंने कार्तिक को कपिल धारा में खड़े होकर वचन दिया कि मैं उसकी औरत बनूंगी, हम दोनों इस देश से भाग जाएंगे। मैं जानती थी कार्तिक उस देश में रहेगा तो किसी दिन गुनिया को ज़रूर मार देगा, तो अगर वो गुनिया को मार देगा तो गांव वाले उसको मार देंगे। तो कार्तिक को बचाने के लिए तुमने अपना देश छोड़ दिया। जानती हूँ वो धरती नरक होती है जहाँ महुआ नहीं उगता, पर क्या करती है? अगर वो देश ना छोड़ती तो कार्तिक जिंदा नहीं बचता, और जो कार्तिक मर जाता तो वो धरती मेरे लिए नरक बन जाती। देश देश इसके साथ घूमती रही, फिर हमारी रूपी भी हमारे पास लौट आई। रूपी कैसे लौट आई? हमने अपनी बिटिया का नाम रूपी रख दिया था। ये भी मैंने कपिल धारा में खड़े होकर अपने मन से वचन लिया कि मेरे पेट से जब कभी कोई बेटी होगी मैं उसका नाम रूपी रखूंगी। तो मैं जानती थी रूपी का कोई कसूर नहीं था। जब मैंने बिटिया का नाम रूपी रखा तो मेरा कार्तिक बहुत खुश हुआ। अब तो रूपी बहुत बड़ी हो गई। अरे बिटिया, अब तो रूपी के बेटे भी जवान होने लगे। बड़ा बेटा 8 बरस का है और छोटा 6 बरस का। मेरी रूपी यहाँ के बड़े माली से ब्याही है। हमने दोनों बच्चों के नाम चंद्रू मुंद्रू रखे हैं, वही नाम जो गोपी के रूपी के बच्चों के थे। हाँ वही नाम रखे हैं। मैं जानती हूँ उनमें से कोई भी पाप का बच्चा नहीं था। तो मैं किन्ना चिर केतकी दे मुँह वल तकदी रही। कार्तिक दी वह कहानी जड़ी किसी गुणिए ने अपने डाढ़े हत्थां नाल उधेड़ दित्ती सी, केतकी अपने मन दे सुच्चे रेशमी धागे नाल उस उदड़ी हुई कहानी नूं मुड़ के सिउंदी पई सी। एक कहानी दी गल है, होर मैनू भी पता नहीं तुहानू भी पता नहीं कि दुनिया दे ये गुणिए दुनिया दीआं किन्नीआं क कहानियां नूं रोज़ उधेड़दे हन। धन्नवाद।
0: The difference is the music.
2: Swan 99.9. ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਲਾ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰ 99.9 FM ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ।